0: निकुलास तुम कुफा भी
1: सोतू सुख सानने रजगले मंदे मंदी तुम्हारे माता का इसके आराम पिसले तुम सब तुम चुकला रहे म्याना का टीम म्याना का काम रहे इतनी म्याना करे अनु ना फिक्री जानी जरूर रिस्क है यहाँ कौन को रिस्क है यहाँ को वाह ये जन अपने जान मंदी तुम्हारे माता का इसके आराम जाने ये जन अपने रिस्क सान ना जब फिक्री जान मु उतनी C'est moi qui ai fait ça, je suis en train de faire ça. Et je suis en train de faire ça en temps de mourir. C'est un peu de temps.
2: Je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça.
3: Je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. Je suis en train de Saya nak buat tarik suit tu jenis tu maaf terlepas suit tu suit sahaja le suit suit tu saya nak kafina timnya nak cari tu ngata tu dia walas sesuatu yang susah.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: छिमी बोगे ले उलू हमारो तने लेंदा सटे माथा उछले हो ही फलो जति विरीसे ये तो ल्यारा दे आकु नेम जे छिमंदे जेम जे मुसारे के जे सटे कुमाते लुत विरीस्तु को जाय सने सटे केरे थे मुनु उलू मलाकी हम सोफ्टो ने ने दिन दिन फसाई पमारो छको ने ने गेतो आकु अविलिमुरा छिलेता ले उलम जे के छिमी बोगे सटे अनसानो माथा उछले विरीसे Zezan matunga nai tarai ko matelo ni virus tu di vago Madagascar ndi ndinda fa atu yan simon tuliara musare

0: बस तुमको फाफी
1: बमंगाता कमीन नंबुमंगा खेल संयर फुकता नंबुमाइंस फाउटन सही नंबुमाइंस अनोटन समास निनी नमीस एट्रम सोफा अंड्रासन रसला तेनिस फिजरा ना ताने ते प्यांस चाते वामनी रोपुल ते उयोन ना तमले लेफोरू निस फंड्राइसना नारा नंद्राया ते ओटन फिट फिटिंग ले प्रेस ना इस मुझांस ते ना प्रेस ना ओटन ने कार्टे मोबाइल ते फिर पेरां फुट से ले सुरत ना ते ते से सेम बस सुरत प्रेस ना ते सान ना तो ने ने वे अंदो सुरत ना रा ओटन ये वेतना मेनो तुझी सन्ना तो न फुंड का ये सिस्टी लो इस